0: हेला नशाला हेला नशाला
1: दिवे एफएम के कुम्मे गडीरे के फैशन विस दिवे अमिल्ला रागे के लवेकुं

0: copy deng astu mi paka mi hafta ka mi bala la lave ki kya mujhe pyar hai mi lava
1: copy deng astu
0: क्या मुझे प्यार है मी लवे की इंडोनेशिया के मशहूर लवे कमगवा टक पिसा का लवे गिरा का पिना कुंग हदाफ वा लवे

मिला वैन रोजे वेकेंगोस फवनी बिलबोर्ड हॉट 100 के गोल्डन टॉप 10 वदेबुन एमे फुरतमा अंगहें केपॉप सोलो फन्नाना नेरुन तामदु दुस कोले केतेरेगा यूट्यूब गा साते का मिलियन अवरे किना व्यूज दिबी टिकटॉक आ इंस्टाग्राम रील्स गा एमे गाते वायरल वी एक ट्रेक अवेगेंदिया

0: नौ दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम असुरु नमा दो वगत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: West. Gadi miharo. Hataru gadi 30 minute hinga af mevani nu adhi hai kem megahertz di FM me vagut kuriam midani tea time request show. Show ga ehun tere ka miharo algon menna mevani kulifa. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Shahu.
1: Baba.
0: Ko ba ke hine shahu.
1: Barabara banan.
0: Sate ka do hama.
1: Sate ka.
0: Kiti kollani me gadi ga.
1: Ni ulani kuda kuda kujik balan jehi.
0: Balan jehi ganti ulani. बेबी सीट कुरा दो है मम्मी आ ती मी फैमिली कुछ जता ने कति बलानी मी हे मी हे नो दन मी हे कुछ जता
1: नो दन मी हे कुछ जनो बलान
0: दो नो बेबी सीट को दी फाणता नो कोंगे रखन ती कमेंट नी मेनी दे
1: मी का नी मेनी हां ए कुछ जा मम्मा फिर मरा नी मुनी
0: हाँ माही कुरी वारं येरो अज्जे कमाएंगे शाहूती बेबी सिट कुराता ऐं में क्या सुमी है मिया हाले
1: नो नो नो
0: को बामिया तो दें कौन कमें मियोती
1: मिदें ना सुबेर दाम वगैरह मुली था ना रोवी बेबी सिट कोगे माती बेर ते वेंदो
0: कौन था कदा दो है मिया तो
1: एडें बेर हमारे कुमला
0: हिंगा मुझे है ना ता हवेरु कड़वी मदें नुकुमेला मारने तो शाहूती की हाँ हिसाब के तो बोनी
1: अलिफ अलिफ
0: अलिफ अलिफ रशन नु बना नंदो
1: दावनम मोनिन दो पुरतो कुले दो
0: शाह मावारन हंदाम बाईये मास मी नोट को गेंगे ना फार ओडे ने सिंगे शाहु एमे फाहु फार बने बले रु यागिन हंदाम बा हट्टा नंदे कोनिश के तोनी थोड्डो आ बुन्ने दो कोंगिरे कोंगे थोड्डो अंग अंदर मी हार बहांदाम वे
1: आ एवर हंदाम वावर बुने मिया
0: हंदा नुहुन्ने ने नंग वले ने असलो देंगे कम शाहू के ना यागी नो में संदान होना नहीं शाह माइंगे
1: बाला मार देना टीवी को तो जो होने याने का दोस्त पर कॉल्ला है देंगे लोग
0: टेस्ट करें दो
1: टेस्ट करो पास ले तो
0: बेरत ही दें सैबो शाय कुत्ता
1: ये तो सैबो है ना ये ना वाला सॉन्ग के आराम ना क्यों नहीं ये मैं कॉफी है हमें ना
0: आम को हम को में दो कुछ हावी रुपए रखो सुड़न था शाहू
1: को में दो को दें आने ही बेरा कर मजा नहीं कम हावी रो वाला बलम ताने करनी चाहिए वे तो की
0: दें दाना को सुड़न था
1: उनका दाना का दाम ये ना
0: थोड़ू का अन्ना ने ना बावर दान तांडो नो अन्ना ने
1: हाँ तांडो वे तो तांडो हद दाग कर दो बाला मने कोले ने तांडो वेरी तो एकाम इस मुना को बाय फार दांगे चला
0: तीवर रंगलो का मिलता तो दोहा को सादी नो फिर नहीं आता इंडे
1: एक वहीं मेरे नाम को हर में गोस के पते हैं नोए
0: उधर गोए
1: उधर गो
0: याने ककी कुरनी शाहू दांडा गोस की कुरनी
1: का कुरन नेंगे मुझे हम उधर कुता वाणी
0: असलो इस तो कुरन नेंगे कुरंग मुले फिया वाणी उधर गुदा कर
1: दा आह हम वे मेरे ना बड़ा ही वाणी उधर गोहे वाणी लेकिन हमें बस हर गोस हर में ये लिए स्वे तो
0: वारा बड़ू था मी तोड़ दोगे दांडू था
1: आह अब बड़ू हूँ मैं
0: हम गेल्ले वारो तो
1: गेल्ले और तो
0: हंदे एहम वीमा शाहू मती हंदा मे होरी विस तोड्डू आहा क देखी म दो एरो
1: हां एरो असु दे एदो सेहम वेगेन स नै बुली वे
0: दाणा इंगे एहम वीमा शाहू कोंबे क लवा खास को लानी शाहा मा एदन रीति लवे म ओति नागा फ शाहू बणे के
1: आ दे शाहा मा एसा दे नदो वा को दिन न देन एसे म दो को दिन न दो लवा नाम मुल्ला लवा ले फेर फार गई तुरु मिन्या अस्तन कने
0: मी यूसुफ के लवे एक बीवे दाने बा एलवे देन शहामा रीति वर देन शहू बेनु मी आइतुर लवे कस बदल को देवि दाने
1: नो नो नो एलवे रंग लवे
0: रंग लवे
1: हासा कुरुन दो मी
0: दवाई गोतुन ता एंगे ने हासा कुरान बे दो
1: आ आ हिम ओके वन
0: एम कोंबे क लवे खास को लाने
1: शहामा
0: आ वर बड़े थैंक यू शहू आदि वेस दिमावान का उम्मीद कर वर उफा वेज शहू आ
1: मेरा सुन दिमावान का उम्मीद कर
0: वर आवा इंशाल्लाह बाकी वेलाने में वर बाजे दो हकन ए दे ಶಾಹು ಬುಣಿ ಲವ ಶಹಾಮಾಯ ನುಫೆ ನುಣಿಮ ಶಾಹು ಬುಣೆಫವಣಿ ಶಹಾಮಾಯ ರೀತಿ ಲವೈ ಚಹಾಲ್ದೆ ಶೆಹೆಮ ಶಹಾಮಾಯ ರೀತಿ ಲವೈ ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ದೆನ್ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಮಿಫಾರು ಶಹಾಮಾ ಮೀ ನೆಗಿಲ್ಲವ ಶಹುವ ಕಮ ದಾಣೆ ಕಮ ಎಹೆಮ ಹಿಂಗ ಶಾಹುಗೆ ಶಾಹು ಬುಣೆಗೆ ಶಹಾಮಾ ನೆಗಿಲವ ಮಿಫಾರ್ ರೀತಿ ವೇತೋ ಬಲಾಲಮಾದ

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है हुजूर अपना है।

0: नुआ दी है 1 MHz दी वही FM फातिस नमा दो वागुत
1: नुआ दी है 1 MHz
2: अल्लाहु अकबर